0: उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। 6:05 आणि 12 सेकंद झालेली आहेत। श्रोते हो ऐकवीत आहोत भक्तिगीतांचा कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रमात सुरुवातीला उषा मंगेशकर यांच्या आवाजात भूपाळी ऐकवीत आहोत। रचना आहे संत तुकारामांची आणि संगीत अण्णा जोशी यांचं।

0: सब क्लियर नहीं है।
1: अरे पर्दा ही मेला है।
2: अरे कुछ आता है कि नहीं?
0: सच है भैया, सुपर निर्मा से मिले सुपर सफेदी।
3: श्रोते हो, आता सुगम संगीताच्या कार्यक्रमात ऐकवीत आहोत छाया वानखेडे यांनी गायलेलं भक्तिगीत। रचना आहे संत तुकडोजी महाराजांची।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल

0: शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।

0: पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया

0: ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Center operationalizes 4 labor codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will

0: शुभ मंगल सावधान या चित्रपटासाठी लता मंगेशकर यांनी गायलेलं गीत आपण ऐकलं. शब्दरचना प्रवीण दवणे यांची होती आणि संगीत होतं अनिल मोहिले यांचं. आणि या गीताबरोबरच मराठी चित्रपट गीतांचा हा कार्यक्रम संपवित आहोत. आम्ही आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून बोलत आहोत. 9:30 झालेली आहेत. श्रोते हो, आता मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा ध्वनिमुद्रित कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत. विषय आहे मदर्स डे आणि प्रेग्नन्सी आणि तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर रजनी गुप्ता. सादर करत्या संगीता अरजपुरे. ऐकूया कार्यक्रम.
1: कार्यक्रम मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपूर.
2: श्रोताओ नमस्कार. मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मानकापूर चौक कोराडी रोड नागपुर हेलो डॉक्टर, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. श्रोताओं, आज का विषय है मदर्स डे और प्रेगनेंसी, और इस विषय पर मार्गदर्शन करने यहां उपस्थित हैं तज्ञ डॉक्टर रजनी गुप्ता. ये स्त्री रोग तज्ञ हैं और इस विषय पर आज हमें मार्गदर्शन करेंगी. श्रोताओं, आज जागतिक मातृ दिवस है और पूरी दुनिया में मां के निस्वार्थ प्रेम और उसके योगदान को समर्पित ये दिन मनाया जाता है. इस दिन के अवसर पर आज हमारा विषय भी ऐसा ही है, मदर्स डे और प्रेगनेंसी. तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं. आज हमारे यहाँ जो उपस्थित हैं स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर रजनी गुप्ता, इनसे हम आज बातचीत करते हैं. डॉक्टर रजनी गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: ओके, धन्यवाद. और मैं सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी.
2: जी डॉक्टर, ये जो दिन है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक माँ के लिए. और ये जो पूरा सफर है माँ बनने का कंसेप्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो पहला सवाल हम ये

0: यही करना चाहते हैं कि आजकल कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए, जैसे प्लानिंग किया जाता है करना चाहिए, तो क्या पूर्व तैयारी करते हैं, कैसे प्लानिंग करनी है?
1: देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो
0: जी
1: सबसे पहले कि आपका ऑप्टिमल हेल्थ होनी चाहिए।
0: जी जी
1: तो अगर किसी का ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, तो वो वेट कम करें। अगर कोई माल नरिश है, वेट कम है, या खाने पीने में उतना न्यूट्रिशन का अपना नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, चाहे अज्ञानतावश है या बिजी लाइफ स्टाइल कारण, थोड़ा उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इस एज में, जो कि ये एज होती है 25 से 35, 38 तक, उस समय ये हो सकते हैं, अगर उसके बारे में पहले से जानकारी है
0: जी
1: तो उन उन बीमारियों को कंट्रोल करके प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो टेस्ट के लिए मैं बोलूंगी कि बेसिक टेस्ट जैसे रहते, हीमोग्लोबिन चेक करना कि एनीमिक तो नहीं, अगर एनीमिक है तो एनीमिया पहले इम्प्रूव कर लें। थायराइड हाइपोथायरायडिज्म एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो जब तक बहुत ज्यादा नहीं होती उसके ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: एक थायराइड का टेस्ट करा लें। फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है शुगर की, या ब्लड प्रेशर की किसी की हिस्ट्री है फैमिली में, तो खुद का ब्लड प्रेशर चेक कराना, शुगर चेक कराना।
0: जी जी
1: इसके अलावा ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन एक और चीज होती है रूबेला। एक ये ऐसी बीमारी होती है जो जीवन में एक बार होती है। इसका इसलिए महत्व है, अगर ये कभी नहीं हुई और प्रेगनेंसी के समय पहली बार होती है तो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है।
0: अच्छा
1: तो एक टेस्ट होता है रूबेला IgG, अगर ये पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है आपको वैक्सीन लग चुका है और आपको, आपके अंदर इस बीमारी से लड़ने की क्षमता है, तो आपको ये बीमारी प्रेगनेंसी में नहीं होगी।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: एक प्रेगनेंसी तैयारी करने के पहले रूबेला IgG टेस्ट करा लें, और ये पॉजिटिव है तो निश्चिंत रहें,
0: अच्छा
1: इसकी
0: अच्छा
1: अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी देखा है कुछ पेशेंट डर जाते हैं कि पॉजिटिव है उसका ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव है तो निश्चिंत रहे, अगर निगेटिव है तो रूबेला की वैक्सीन आती है, आप अपने डॉक्टर से कह के वैक्सीन लगा, वैक्सीन लगाने के 3 महीने बाद प्रेगनेंसी ट्राई करें।
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: मींस प्रेगनेंसी के दौरान उसके पहले
1: उसके
0: ये
1: पहले ये वैक्सीन लेनी
0: वैक्सीन
1: रहती है।
0: ले
1: ये
0: जरूरत
1: वैक्सीन
0: है।
1: बचपन में दी जाती है, MMR जो वैक्सीन होती है, मीजल्स
0: जी
1: मैन रूबेला,
0: जी
1: वो दी जाती है। लेकिन अगर वो नहीं दी गई है या किसी कारणवश वो इफेक्टिव नहीं है, तो ये एक वैक्सीन प्रेगनेंसी के पहले लगानी चाहिए।
0: अच्छा
1: और ये तो थोड़ी ये होगी क्या क्या करना। उसके अलावा फोलिक एसिड, एक ये टेबलेट होती है, वो आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी।
0: जी
1: ये सिर्फ ऐसी एक है, एक विटामिन है, जिसको लेने से बच्चों को कुछ तरह की कॉन्जेनाइटल डिजीजेस नहीं होती, जैसे स्पाइना बाइफिडा या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम, क्रेफ्ट, ये सब नहीं होता है। तो फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम का सेवन आप प्रेगनेंसी तैयारी, जब आपका है कि प्रेगनेंसी होनी है, उसके आप पहले ही उस समय शुरू कर लें, तो जब तक ये 2-3 महीने बाद प्रेगनेंसी होती है, इट विल रिमेन इफेक्टिव, और इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी लिया जाता है।
0: अच्छा, गर्भावस्था, गर्भधारणा अगर होनी है तो इसके 2-3 महीने पहले से आपको
1: पहले
0: तैयारी
1: से ही
0: करनी
1: तैयारी
0: है।
1: करनी है।
0: जी जी जी
1: आपका ये प्लान है कि हमें 2026 के शुरुआत से करनी है, तो आप अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर 2025 से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए
0: जी
1: थी। और बाकी वेट है, बाकी हेल्थ है, तो उसका ध्यान तो हमें लाइफ स्टाइल चेंजेस में हमेशा ही रखना चाहिए,
0: अच्छा,
1: ना ही प्रेगनेंसी के समय, बल्कि खुद के लिए भी।
0: जी जरूरी है।
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
0: डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो तैयारी है, तो ये तैयारी जो आहार है, तो आहार में से भी हम बहुत से अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो उसके पहले डाइट का भी कैसे ध्यान दें?
1: प्रेगनेंसी के पहले भी और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान,
0: जी
1: प्रेगनेंसी के पहले जैसे मैंने कहा कि हेल्थी लाइफ स्टाइल, तो उसमें आप लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, हमारी इंडियन डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट होती है हमारे, जो यूजली हमारा खाना है, तो पर्पसफुली प्रोटीन बढ़ाएं। प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, अगर आप वेजिटेरियन है तो ये सोर्स, दूध के मिल्क प्रोडक्ट, अगर आप बाकी ले सकते हो तो एग इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
0: जी
1: नॉन
0: जी
1: वेज ले सकते हो तो लीन मीट,
0: अच्छा
1: चिकन या जो लीन फिशेस होती हैं, दोज आर द बेटर वन। तो ऐसे करके डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, फ्रेश फ्रूट, सलाद और डेयरी प्रोडक्ट, ये चार तीन चार चीजों का ध्यान रखना है।
0: जी, और इसके साथ व्यायाम और ये एक्सरसाइज जो किए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: प्रेगनेंसी के पहले भी मॉडरेट एक्सरसाइज, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेंटल एंड फिजिकल यू आर वेल, आपको ज्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा बोन वीक हो, अगर आप

0: जैसे प्रेगनेंसी में कभी कभी मैंने देखा है कि लोग अवॉइड करते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना है, ज्यादातर बेड रेस्ट लेना है, दैट इज नॉट नेसेसरी.
1: जी,
0: नॉर्मल ज्यादातर प्रेगनेंसी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको मॉडरेटली एक्टिव रहना है.
1: अच्छा,
0: तो उसमें आप अपना कम से कम 30 मिनट तक वॉक कर सकते हैं, आप प्रीनेटल योगा कर सकते हैं, आप बाकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. क्या नहीं करना है, आपको इतना एग्जर्ट इतना नहीं होना है कि आपको पसीना आ जाए, आपके सांस फूले या आपके दिल की धड़कन आपको पता चलने लगे, ये नहीं करना है.
1: जी,
0: जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि गिर करके चोट लगने, क्या होता है प्रेगनेंसी में अचानक से चक्कर आ सकते हैं,
1: हाँ,
0: तो ऐसा एक्सरसाइज नहीं करनी कि आप गिर जाए और चोट लग जाए. जैसे आप ट्रेडमिल नहीं करें, ऐसी एक्सरसाइज जुम्बा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी आप कर सकते हैं. मॉडरेट वॉक, द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप मॉडरेट वॉक, कम से कम 30 मिनट का वॉक करें, अच्छे
1: जी
0: शूज पहन के करें कि आपको कंफर्टेबल रहे, गिरने का डर नहीं रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग. प्रेगनेंसी में आपको मॉडरेटली एक्टिव रहना है, बेड रेस्ट
1: अच्छा
0: की जरूरत नहीं रहती कि प्रेग्नेंट हुए हो बेड रेस्ट करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती
1: जी
0: है.
1: जी जी अगर व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, तो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, अगर आपकी प्रकृति कैसी है
0: नहीं,
1: या
0: नॉर्मल अगर देखो प्रेगनेंसी, एक नॉर्मल ज्यादातर प्रेगनेंसी नॉर्मल वुमेन में, मतलब इट इज अ यंग एज, दे डोंट यूजली, उनको ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है.
1: जी
0: पर अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पेशली कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है या ऐसा कुछ है तो है, नहीं तो आप अपनी डे टू डे लाइफ अपनी कंटिन्यू रखें. जैसे कि बताया आपको पसीना नहीं आना चाहिए, सांस नहीं
1: जी
0: फूलना चाहिए,
1: जी
0: दिल की धड़कन नहीं पता चलनी चाहिए, साथ में झुकना नहीं है, झुक के एक्सरसाइज की बैक केक वगैरह हो तो ऐसे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे पेट और पीठ में प्रेशर पड़े वो एक्सरसाइज नहीं करनी है.
1: अच्छा,
0: बाकी आप अपना डे
1: नॉर्मल
0: टू
1: एक्सरसाइज हम कर
0: आप कर
1: सकते हैं
0: सकते हैं. हाँ,
1: जी।
0: और प्रीनेटल योगा के भी बहुत क्लासेस होती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं.
1: जी, डॉक्टर, जैसे हमने देखा कि बहुत सी जो ऐसी टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी के पहले करनी है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद कौन सी टेस्ट होती हैं?
0: प्रेगनेंसी के बाद अगर आप विजिट के लिए बोलें तो आप, जैसे आपका पीरियड मिस हो गया है, 6 to 7 week हो गया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो एक डॉक्टर का विजिट हो जाना चाहिए उस समय.
1: जी
0: तो जैसे वो आपका हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, यूरिन, ये सब टेस्ट करेंगे. और एक अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है जिसमें पता चलेगा कि बच्चे की वायबिलिटी कैसी है, ट्विन तो नहीं है, प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस नहीं है. ये एक बेसिक टेस्ट होता है जो कि हम बुकिंग टेस्ट कहते हैं.
1: जी
0: उसके बाद फिर 3 month में एक न्यूकल ट्रांसलेंसी स्कैन होता है, एनटी स्कैन उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. ये करीब 12 week प्रेगनेंसी में किया जाता है. इससे कुछ अर्ली कॉन्जेनेटल अनोमलीज का डिटेक्शन होता है. फिर
1: जी
0: उसके बाद कुछ और टेस्ट होते हैं जो मार्कर टेस्ट हैं, डबल मार्कर या क्वाड्रपल मार्कर, वो डॉक्टर आपको करने के लिए बोलेंगे. फिर 5 month
1: अच्छा,
0: का स्कैन, जिसको कि हम अभी टारगेटेड स्कैन या सेकेंड लेवल स्कैन बोलते हैं, ये बच्चे की एनोमली, सब ज्यादातर जो मेजर एनोमली जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बच्चे में हो सकती है वो डिटेक्ट हो जाती है, वो 20 week में
1: जी,
0: किया जाता है.
1: अच्छा। बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो इतने टेस्ट नहीं थे, आजकल इतने टेस्ट बताते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो ये जो उनका उनकी गलतफहमी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
0: देखिए, जैसे कि अभी तक मैंने बताया कि 5 month तक ये टेस्ट होते, तो बेसिक इतने टेस्ट रिक्वायर होते हैं. पर हर विजिट में स्कैन करना, या हर थायराइड नॉर्मल आने के बाद भी हर 3-2 महीने में टेस्ट कराना, ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाता है. पर अगर आपको एनीमिया है तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको कुछ टेबलेट दे के 1 या 1.5 महीने बाद देखेंगे इम्प्रूव हुआ
1: जी
0: है
1: जी
0: कि नहीं.
1: जी
0: तो टेस्ट तो डेफिनेटली कराना चाहिए, क्योंकि इससे
1: जी
0: आपका वेल बींग पता. देखिए पहले के समय में, और जैसे जब टेस्ट नहीं होते थे, तो उसका तो एविडेंस है कि फीटल लाइक मॉर्टेलिटी इन द चाइल्ड या न्यूनेटल मॉर्टेलिटी या मैटरनल मॉर्टेलिटी का रेट ज्यादा था.
1: अच्छा,
0: तो इससे फर्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है. पर डेफिनेटली हाँ, ठीक है, ओवर भी नहीं करना चाहिए कि हर महीने अल्ट्रासाउंड किया जा कि कराना है, या
1: जी,
0: हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बाद भी 1 महीने के बाद टेस्ट करना है. ये सब चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा अननेसेसरी हैं,
1: अच्छा।
0: लेकिन जो बेसिक टेस्ट हैं वो तो करने चाहिए.
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम.
1: आजकल इतना एडवांस आ गया है, एडवांस टेस्ट आ गए हैं, तो इसकी वजह से हम आगे आने वाली जो कुछ मुश्किलें हैं वो
0: मुश्किलें हैं
1: अवॉइड
0: उसको
1: कर सकते
0: अवॉइड
1: हैं।
0: कर सकती
1: जी
0: हैं.
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: मैंने बताया कि जब हम 3 month का स्कैन करते हैं तो हम उसमें ये भी देखा जाता है कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई कैसी जा रही है.
1: जी जी
0: अगर वो थोड़ी हाई रेजिस्टेंट है तो इसका ये मतलब

0: रहता है कि मदर को आगे हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना या बच्चे का वेट कम होने की संभावना, तो डॉक्टर उसके लिए ब्लड थिनिंग एजेंट तब शुरू कर देते हैं 3 मंथ्स में,
1: जी
0: तो ये सब चीजें प्रिवेंट हो जाती हैं।
1: जी जी
0: तो टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट है वो तो करने
1: करनी
0: चाहिए।
1: चाहिए डॉक्टर। जैसे गर्भावस्था में माँ के लिए जितने जरूरी टेस्ट है, उतनी टेस्ट पिता के लिए भी, पति के लिए भी जरूरी
0: अगर
1: है क्या?
0: गर्भ गर्भ हो
1: जी
0: गया है

0: अगर
1: है क्या?
0: गर्भ हो
1: जी
0: गया है तो पति के लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है,
1: जी जी उसके पहले,
0: पर हाँ उसके पहले डेफिनेटली अगर मोर देन अगर किसी मतलब ट्राई कपल ने ट्राई किया है और 5-6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हस्बैंड का भी सिमिलिसिस होता है, वो तो इनफर्टिलिटी पार्ट में आ जाता है।
1: जी,
0: उसके अलावा मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि एक स्मोकिंग एक आदत होती है जेंट्स में, जो कि अगर वो कर रहे हैं और प्रेग्नेंट उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है उनके सामने कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो पैसिव स्मोकिंग हम कहते हैं। अगर मदर स्मोकिंग खुद नहीं भी करती पर उसके सामने कोई स्मोक कर रहा है तो उसको पैसिव स्मोकिंग का उसका भी बुरा असर घर पे पड़ता है।
1: अच्छा,
0: तो अगर हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो वो ना करें, और अगर ये लाइफ स्टाइल अगर वाइफ इम्प्रूव कर रही है जैसे मदर कर रही है फैमिली के लिए तो ये हस्बैंड के लिए भी अच्छा है। एक अच्छी
1: जी
0: लाइफ
1: जी
0: स्टाइल सभी के लिए अच्छी होती है, तो वो भी फ्रेश फ्रूट लें, सलाद लें, वॉक के लिए जाएं, योगा करें, तो ये अगर वो अपनी वाइफ के साथ करते हैं तो एक पॉजिटिव एक रहता है कि दोनों ही मिल करके एक इन्वायरमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो ये
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: ही
1: जी
0: रहता है।
1: अच्छा, क्योंकि ये इतना अच्छा एक टर्न है माँ और
0: फैमिली
1: पिता
0: सबके
1: फैमिली के
0: लिए,
1: लिए। जी
0: जी,
1: जी जी मदर्स और फादर के लिए भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण
0: और ये माँ को
1: दिन
0: भी फिर
1: है।
0: अंदर से लगता है कि उसको ये सपोर्ट मिल रहा है, तो शी हैज वेरी पॉजिटिव कि हाँ उसके सपोर्ट में है,
1: जी
0: और फिर वो एक मेंटल जो पीस रहता है या मेंटल वेलबींग रहता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है।
1: अच्छा, डॉक्टर, गर्भावस्था के दौरान जो सोनोग्राफी की जाती है तो ये कितने बार की जाती है और इसका महत्व क्या बताएंगे?
0: बेसिक सोनोग्राफी अगर आप सिर्फ बेसिक पूछेंगे कि मिनिमम कितनी करनी चाहिए, मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम कम से कम 2 सोनोग्राफी तो होनी चाहिए। एक 3 मंथ में होनी चाहिए जिससे अर्ली अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है,
1: जी
0: न्यूक्रल हम ट्रांसलेंसी देखते हैं और यूट्रस को ब्लड सप्लाई कैसे जा रही वो देखते हैं, एक वो बहुत जरूरी है, और दूसरा 5 मंथ वाली जरूरी जिसमें मेजर अनोमलीज देखी जाती है, प्लेसेंटा की लोकेशन देखी जाती है और बच्चेदानी के मुंह की लंबाई कितनी है वो देखी जाती है,
1: जी,
0: डॉपलर देखा जाता है, ये 2 तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा एक्सटेंडेड कर दें तो एक 6-7 वीक में अर्ली वायबिलिटी देखने के लिए, लोकलाइजेशन और प्लेसेंटा देखने के लिए, देन डेफिनेटली 3 मंथ वाली, 5 मंथ वाली, फिर हम एक 7.5 मंथ में करते हैं उसको डॉपलर एंड ग्रोथ स्कैन बोलते हैं,
1: जी,
0: ये 4 स्कैन थोड़ा एक्सटेंडेड में करने चाहिए। और बाकी अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है या और कोई प्रॉब्लम हो तो उनमें फिर ये सोनोग्राफी का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।
1: अच्छा डॉक्टर, ये जो सोनोग्राफी की जाती है तो इसमें जो चेकअप होता है या टेस्ट होती हैं तो इसके दौरान कुछ रिस्क फैक्टर्स अगर दिखाई देते हैं तो कैसे मैनेज किया जाता है?
0: देखिए सोनोग्राफी तो बेसिकली हम देखने के लिए करते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो एज के हिसाब से प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है,
1: जी
0: और दूसरा वाटर का क्या लेवल है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई कैसे जा रही है, ये 3-4 चीज मेजर जो बच्चे के लिए देखी जाती है। तो डेफिनेटली अगर ब्लड सप्लाई कम जा रही है या पानी कम हो रहा है तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो स्पेशली उसमें ब्लड थिनिंग एजेंट रहता है या वैसो डायलेटर रहता है या नाइट्रस ऑक्साइड डोनर, ऐसी जो दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि पानी थोड़ा सा परफ्यूजन अच्छा होता है, बच्चे
1: जी
0: को ब्लड
1: जी
0: सप्लाई बढ़ती है, तो ये डॉक्टर देख करके कि क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर, ये पूरे 9 महीने में कुछ वार्निंग साइंस भी दिखाई देते हैं?
0: डेफिनेटली कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें कभी क्रैम्पी पेन होना, फ्रेश ब्लीडिंग होना या एक साइड में पेन होना, लेकिन कभी कभी ये प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर हो सकती है जिसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यूजली ये अर्ली प्रेगनेंसी में होता है,
1: जी,
0: तो वुमन विल हैव पेन लोअर एबडामन में या राइट या लेफ्ट में पेन होगा सडन, उसके साथ थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, गिडीनेस हो सकती है, तो स्पेशली पेन है, ब्लीडिंग है, सडन गिडीनेस है, फिर ब्रेथलेसनेस है,
1: जी,
0: सडन इडिमा ऑफ द बॉडी है कि अचानक से हाथ पैर चेहरे पे सूजा जाना, बहुत ज्यादा हेडेक होना, पेट में दर्द होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर की निशानी होती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में पेन ब्लीडिंग मेन है, उसके बाद सेकेंड ट्रेमेस्टर में हम बोल सकते हैं हेडेक, ब्रेथलेसनेस, इडिमा, उसके साथ पेन एंड ब्लीडिंग, ये तो फिर रहता है।
1: अच्छा,
0: लेट प्रेगनेंसी में ये तो अर्ली प्रेगनेंसी में माँ का मतलब जो माँ की बीमारियां डिटेक्ट करते हैं, लेकिन कभी अचानक से बच्चा कम घूमे या ना घूमे तो हम मदर्स को हमेशा बोलते हैं 26-28 वीक के बाद कि आप फीटल मूवमेंट काउंट करें, देयर शुड बी 10
1: जी
0: गुड
1: जी
0: एपिसोड ऑफ मूवमेंट एवरी डे,
1: अच्छा
0: लेकिन माँ के हिसाब से माँ को पता है उसका बच्चा कैसे घूमता है, तो उसको सडनली लगे जितना मेरा बच्चा कल तक घूम रहा था उसके हिसाब से काफी

0: भी कम घूम रहा है, तो वो पहले 1-1.5 घंटे लेट करके थोड़ा सा पूरा ध्यान लगा के देख सकते हैं, उसके अलावा उसके बाद भी उसको लग रहा नहीं तो दे शुड रिपोर्ट टू द डॉक्टर।
1: अच्छा अच्छा
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये कार्यक्रम और आज का विषय है मदर्स डे और प्रेगनेंसी, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रही हैं गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर रजनी गुप्ता। डॉक्टर रजनी गुप्ता, ये जो माँ बनने का दौर है ये तो एक स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा केयर लेनी चाहिए, जैसे खाने की बात है या एक्सरसाइज आपने बताई है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगी?
0: देखिए, फूड क्या लेना चाहिए तो बताएं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत से मिथ हैं। हर पेशेंट आती है उनके साथ जो उनके फैमिली मेंबर रहते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये खट्टा है ये गर्म है ये है, तो ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा मिथ्स होते हैं। तो मैं कुछ कैटेगरीज बताती हूँ कि क्या फूड नहीं खाना चाहिए, उसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं जो जो आपको टॉलरेट हो। तो क्या खाना चाहिए उसमें तो है लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो लोकली अवेलेबल सीजनल फ्रूट हैं दोज आर द बेस्ट, उनमें उतना ही ज्यादा विटामिन होता है, वो कोल्ड स्टोर से नहीं आते हैं, लोकली अवेलेबल फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का है। जितना आप अनप्रोसेस फॉर्म में खाएंगे, अनप्रोसेस का मतलब है कि जैसे आप कहिए कि पॉलिश दाल है और अनपॉलिश दाल है, प्रोसेस का ये मतलब नहीं, मैं फास्ट फूड की बात नहीं कर रही हूँ, फास्ट फूड शुड बी अवॉइडेड, लेकिन आप घर का बना खाना खाइए, फ्रेश फूड जितना ले सकते खाइए, वेजिटेबल और जो फ्रूट्स उनको अच्छे से धो के खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, इससे अच्छा फाइबर विटामिन मिनरल होता है। दालें ज्यादा यूज करें क्योंकि हमारी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, वेजिटेरियन के लिए दाल एक अच्छा सोर्स रहता है, तो जो सीड्स हैं दाल है वो ज्यादा यूज करें। उसके अलावा क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें जो बाहर के जो फास्ट फूड है उसमें आप इंडियन फूड भी कह सकती हैं, जो हमारे समोसा कचौड़ी पानी पूरी है,
1: जो ऑयली ज्यादा है,
0: ऑयली भी ज्यादा है उनके, आप जो आप उतना जो फैट रहता है वो ट्रांस फैट है, उसी फैट में बार बार वो फ्राई किए जाते हैं, और हाइजीन वो जिस तरह से बनाए जाते ज्यादातर वो प्रोसेस उतनी हाइजीनिक नहीं होती है, तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
1: अच्छा,
0: फिर अच्छा वेस्टर्न फूड अगर आप बोलेंगे बर्गर पिज्जा, उसमें क्या होता है दोज आर द फ्रोजन फूड, उसको थॉ करके उसको फिर पकाया जाता है। ये दोनों ही फूड में जो जो वेस्टर्न स्टाइल का हमें लग रहा है कि हम बहुत साफ सुथरे रेस्टोरेंट में, लेकिन जो फूड की जो प्रोसेस रहती है उसमें भी एक शिगेला इन्फेक्शन हो सकता है।
1: जी जी जी।
0: तो उस इन्फेक्शन के कारण भी बच्चे को तकलीफ हो सकती है, तो अच्छा। बाहर का खाना अवॉइड करें, घर में साफ सुथरा बना हुआ खाना, फ्रेश खाना, और जो थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट में ज्यादा हो वो ज्यादा लेना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसके अलावा जैसे सी, हमारे नागपुर में तो नहीं है लेकिन जो सी बीच के साइड में जो रहते हैं, तो जो सी फूड रहते हैं उसमें लॉट्स वो मरकरी का थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट हो सकता है, वो अवॉइड करना चाहिए। जो अगर आप एग और नॉन वेज खाते हैं शुड बी फुली कुक्ड, ऐसे यूजली हमारे इंडिया में तो फुली कुक ही खाया जाता है, हमारे कोल्ड नहीं खाया जाता मीट।
1: जी जी जी।
0: तो क्योंकि उससे अगर अनकुक्ड है उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। मिल्क भी हमेशा पॉस्चराइज मतलब अच्छे से उबाल के लेना चाहिए, पॉस्चराइज अच्छा, मिल्क, नहीं तो उससे भी बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस होने का डर रहता है, तो अच्छा, मिल्क अच्छा। मिल्क भी अच्छे से उबाल के लेना चाहिए, तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना
1: हमें
0: चाहिए,
1: बहुत ध्यान रखना आहार चाहिए, का भी बहुत ध्यान रखना है।
0: इसके अलावा बाकी सब कि ये नहीं खाना, आम नहीं खाना है, कीवी नहीं खाना, ये सब मिथ्स है, फ्रूट आप सब खा सकते हैं।
1: जी जी। गर्भावस्था के दौरान बहुत से हम सावधानी बरतते हैं, तो इस दौरान ट्रैवलिंग कभी कभी किया जाता है या करना पड़ता है, तो इसमें क्या हमने केयर करनी चाहिए?
0: देखिए, ट्रैवलिंग से कोई मिसकैरेज अबॉर्शन नहीं होता है।
1: जी जी।
0: ऐसा नहीं है कि ट्रैवल करने से कोई मिसकैरेज अबॉर्शन होता है, दैट इज अ मिथ। ट्रैवलिंग से दो चीजें याद आती है, एक तो जब आप ट्रैवल करते हैं, आप किसी भी वाहन से करें, यू आर इन अ क्लोज कंपार्टमेंट, आप ट्रेन से बस से खुद की कार भी है तो कम से कम 3-4 लोग साथ में कुछ घंटे तक हैं, तो उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और दूसरा फूड रिलेटेड हाइजीनिक, जो आप बाहर का खाना खा रहे हैं, आप हाथ उतने से अच्छे से धो नहीं पा रहे हैं, कुछ भी है, तो उससे फूड रिलेटेड इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये दो चीजों का रहता है। फिर ट्रैवलिंग के जो अपने, जैसे आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो बैक एक होना, नौजिया होना, वोमिटिंग होना, वो सब चीजें हो सकती हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन ट्रेवलिंग से मिसकैरेज अबॉर्शन नहीं होते हैं।
1: अच्छा।

0: दूसरा एयर ट्रेवल इज ऑल्सो, यही दोनों रिस्क रहते हैं। उसके अलावा अगर बहुत लंबा एयर ट्रेवल है, 4 या 5 घंटे से ज़्यादा, तो वो एक डीप वेन थ्रम्बोसिस होती है, लेग की वेन में क्लॉट बन जाते हैं, उसके चांस होते हैं थोड़े से।
1: अच्छा,
0: तो अगर आपकी एयर ट्रेवलिंग 4 या 5 घंटे से ज़्यादा है, तो डॉक्टर आपको ब्लड थिनिंग एजेंट 4-5 दिनों के लिए देते हैं, ऑन 1 day before traveling to 3 days after traveling, तो आप वो लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन मैं ये कहूंगी कि क्योंकि ट्रैवलिंग से इन्फेक्शन का डर रहता है, तो अगर ट्रैवलिंग इज नेसेसरी, आपको कुछ ऐसे फैमिली इवेंट पर जाना जिस वंस इन लाइफ टाइम, तो करें। बट डोंट डू द लीजर ट्रैवल कि गोवा घूमने जाना है या
1: अच्छा,
0: वो अवॉइड
1: अगर
0: करें।
1: जी
0: बाहर का
1: जी
0: खाना भी उसमें अवॉइड होगा, बाकी इन्फेक्शन भी अवॉइड होंगे, बट इफ इट इज नेसेसरी यू कैन ट्रैवल, नो प्रॉब्लम।
1: जी जी
2: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
1: डॉक्टर, एक स्त्री के लिए माँ बनने का ये जो सफर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सफर का जो अनुभव है, ये उसके लिए बहुत ही खास होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी सभी माताओं को?
0: माँ बनने का जो अनुभव रहता है, या माँ बन के जो बच्चे के साथ लगता है, उसको उसको कोई भी अनुभव या कुछ भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है।
1: जी,
0: तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंड के साथ शुरू करें, और पूरे घर का एक मतलब आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए माँ बनने के लिए। और फिजिकली तो हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है। उसके अलावा इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग, वो भी एक पार्ट रहता है उसमें। पूरे घर वालों को, हस्बैंड, आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, कई बार हस्बैंड और वाइफ ही अकेले साथ में रहते हैं, वर्किंग कपल हैं तो वो है, या जो भी घर के बाकी लोग हैं, तो इट शुड बी टेकन एज वेरी पॉजिटिव वे। और उसको जैसे अभी अब गर्भ संस्कार भी का भी है, गर्भ संस्कार इज ऑल्सो इट इज लाइक बेसिकली थोड़ा सा इमोशनल और मेंटल वेलबींग का रहता है, कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, काम म्यूजिक सुने, घर
1: जी,
0: में बहुत जैसे डोमेस्टिक थोड़ा सा जैसे अब्यूज या वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो कभी भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट
1: हाँ
0: किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ चाहिए। तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग, ये सभी चीज़ों का साथ में, और पूरे घर वालों को भी साथ इसका देना चाहिए,
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। तो
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: बच्चे के आने की खुशी होती है, तो उसको एक उस चीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है।
1: सही
0: तो
1: बात है।
0: पूरे सभी जितना 100% दे सकते हो वो करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी और महत्वपूर्ण ये है कि माँ ने खुश रहना चाहिए और उसके खुशी के लिए सभी ने प्रयत्न करने चाहिए।
0: हाँ, माँ को
1: जी
0: भी खुश रहना चाहिए और सभी को उसके साथ में, और माँ को भी, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी दोनों वे से होना चाहिए। माँ को
1: जी
0: भी
1: जी
0: मतलब एक घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए सभी का उसमें हाथ होता है।
1: जी जी डॉक्टर, आजकल लेट प्रेगनेंसीज रखी जाती हैं, बहुत करियर है या और कुछ कारण है, तो इसकी वजह से लेट की जाती हैं, तो इसका क्या परिणाम होता है?
0: डेफिनेटली देखिए, अगर बायोलॉजिकली आप कहेंगे तो बेस्ट एज टू कंसीव इज 20 to 30 ईयर। पहले तो ये था कि 30 ईयर तक फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन
1: जी
0: अभी जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस है, उसमें शादियां लेट होती हैं, फिर प्रेगनेंसी लेट होती है। तो मैं कहूँगी अगर बहुत ज़रूरी है, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ पर्टिकुलर कहीं माइग्रेट कर रहे हैं या जॉब के लिए, तब है। पर ऐसा ही फैशन जैसा नहीं कि अभी शादी हुई अभी बच्चे नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे।
1: अच्छा
0: तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और 2 प्रेगनेंसी के बीच का जो गैप रहता है, कभी हम लोग आजकल ऐसा भी देखते हैं कि एक प्रेगनेंसी 30-31 में हो गई है, फिर 7-8 साल तक प्लान नहीं किया है। इनफैक्ट जो बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कहता है मेरे साथ खेलने के लिए फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं, तब पेरेंट्स आते हैं। तो लेडी की एज ऑलरेडी
1: अच्छा
0: 38-39 हो
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो 2 प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट गैप अराउंड 3 to 5 4 5 ईयर होना चाहिए, बहुत लेट नहीं करें। इनफैक्ट अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको 2 बच्चे चाहिए, तो आप मेडिकली तो हम कहते हैं कि आप अगर आपको सिजेरियन भी हुआ, आप 6 मंथ के बाद प्रेग्नेंट होते हैं, तो मेडिकली इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली सोशली थोड़ा सा हो जाता है कि 2 बच्चों को देखना या डोमेस्टिक हेल्प क्या उसके हिसाब से कर सकते, लेकिन
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा
0: ये तो सोशल फैक्टर हो गए हैं। इसके अलावा जब आपकी एज ज़्यादा होती है वुमेन की, तो कॉन्जेनेटल एनोमली होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आजकल उसके टेस्ट भी होते हैं जो कि डिटेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आगे का वो रिजल्ट लिए जा सकते हैं।
1: जी
0: और जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे एज के साथ डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन

0: होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस फैक्टर, तो ऑलरेडी लेट है तो आप ऑलरेडी आपको ये चांस है कि आपको हाई प्रेशर शुगर हो सकता है, तो प्रेगनेंसी में उस चीजों के चांस और बढ़ जाते हैं।
1: जी जी जी
0: तो प्रेगनेंसी आप जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा, लेकिन
1: अच्छा
0: उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए।
1: जरूरी
0: तो
1: है,
0: ये सब चीजों को बैलेंस करके करना चाहिए। सिर्फ ट्रेंड है कि अभी शादी हुई अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा अलग होके देखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी डॉक्टर, आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज मदर्स डे है और इस विषय के आधार पर ही आज हमारी ये चर्चा थी, और बहुत ही मूल्यवान ऐसा मार्गदर्शन आज आपका सभी श्रोताओं को मिला है। तो आकाशवाणी की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार।
0: मैं पुनः सभी मदर्स को मदर्स डे की बधाइयां देना चाहूंगी,
1: जी जी जी
0: और भी कोई एक अच्छे मदरहुड का एक्सपीरियंस मिले, ये मेरी कामना है। थैंक यू
1: जी
0: वेरी मच।
1: जी जरूर। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपुर। हेलो डॉक्टर, और आज का विषय था मदर्स डे और प्रेगनेंसी, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया तज्ञ डॉक्टर रजनी गुप्ता। इन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे, और कार्यक्रम के प्रायोजक थे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मानकापुर चौक कोराडी रोड नागपुर। तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर रजनी गुप्ता के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।
2: श्रोते हो आपण ऐकत होतात मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर हा कार्यक्रम।
3: हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण

0: ऐसे युवाओं से ही होगा। जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 2:15 दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या हिंदीतल्या बातम्या दोपहर समाचार आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया. सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने. 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली. हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया. सरकार बनाने का दावा पेश किया. अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है. और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है. श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया. इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है. ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है.
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो. इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है.
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है. श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है. आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है. कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी. बड़ा खेल चला करता था. बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया. लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है. इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया.
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ

0: நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है.

0: गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर

0: का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। NTA ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। NTA ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में IPL क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर संस्कृती भेलोंडे आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून तमिळगा वेत्री कळघमचे सी जोसेफ विजय यांनी घेतली शपथ। जलसंधारण ही जनचळवळ बनणं गरजेचं असल्याचं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं प्रतिपादन। 17 आणि 18 मे रोजी नागपुरात जलसंवाद आणि जलक्रांती परिषदेचं आयोजन। अशोक खरात प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी आणि मार्च महिन्यापासून राज्यभरात उष्माघाताच्या 229 रुग्णांची नोंद, दोघांचा मृत्यू झाल्याची आरोग्य विभागाची माहिती। आता सविस्तर बातम्या। तमिळनाडूमध्ये तमिळगा वेत्री कळघम या पक्षाचे संस्थापक सी जोसेफ विजय यांनी आज सकाळी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली। विजय यांच्याबरोबर 9 मंत्र्यांनीही शपथ घेतली। विजय यांनी काँग्रेस, CPI, CPIM, VCK आणि IUML यांच्या पाठिंब्यासह 234 सदस्यांच्या सभागृहात 120 आमदारांचा पाठिंबा मिळवला आहे। लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि तमिळ चित्रपट सृष्टीतले अनेक मान्यवर या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तसंच इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी विजय यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत। श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसा नायके यांनीही विजय यांचं अभिनंदन केलं आहे। TVKने येत्या बुधवारी 13 मे रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावं असं राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी सांगितलं आहे। आसाम विधानसभेत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून हिमंत बिस्वा सर्मा यांची निवड करण्यात आली। त्यामुळे आता सलग दुसऱ्यांदा सर्मा यांचा मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे। सरकार

0: भारी वाढ आणि दमदार उत्पादन हवं असेल तर आहे एक उत्तम खत, किसान शक्ती निर्मित भारत एनपीके 5-15-0-10 युरिया शक्ती।
1: होय, किसान शक्ती निर्मित भारत एनपीके 5-15-0-10 युरिया शक्ती, ज्यामध्ये आहे नायट्रोजन, फॉस्फेट, गंधक आणि कॅल्शियम, जे पिकांच्या वाढीत आणि उत्पादनात लक्षणीय वाढ करते।
0: सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी उपयुक्त खत, प्रधानमंत्री सबसिडी सह उपलब्ध खत आणि विश्वासार्ह, आजच आपल्या जवळच्या कृषी केंद्राशी संपर्क करा आणि आजच किसान शक्ती निर्मित भारत एनपीके 5-15-0-10 युरिया शक्ती बुक करा।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत आठ क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने

0: हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है।

0: के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र

0: तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोन

0: कर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated

0: Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है. सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं. आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं.
0: द प्राइम मिनिस्टर इन रीसेंट ईयर्स हैज रिपीटेडली लिंक्ड वेलनेस एंड प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर विद नेशनल प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the

0: नेटवर्क इन तेलंगाना। लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड।
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है।
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ द जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड आईसीटी नेटवर्क्स। लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड।
1: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है।
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहने बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
0: According to government estimates, each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come

0: senior broadcaster RJ Simran looks back to some exciting times.
1: अच्छा रेनबो के पहले रेडियो का मतलब था सोबर फॉर्मल एंड देन बाय अर्ली 1993 केम एफएम रेनबो जैसे कि राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में रणबीर

0: just 18,000. This shows how a radio program or a radio station can be made relevant and popular with the participation of common people on its airwaves.
1: Radio is every man's entertainment to drive away the blues. Here is Yusuf Bhai, a taxi driver from Hyderabad. Vivid Bharati is the background score of his long days and nights on the road.
2: गाड़ी में है मेरे रेडियो. पहले के जितने भी चैनल थे साहब और शानदार चैनल थे. अरे वो बिना का गीत माला वो टॉप था साहब. जब अमीन सियानी और तुम्हारे ये बेहतरीन आवाज साहब. कहीं को बोलते हवा महल भी आता था वो बिना का गीत माला जाने के बाद.

0: In the National Program of Features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: This is Akashvani. In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas, Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एनएस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar-style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Shri Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas ne apne Veena Vadan ki shuruaat Raag Gola mein Mysore Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo Adi Taal mein nibadh hai.
2: Vidwan D. Srinivas begins his Veena recital with a composition of Mysore Vasudevachar in the Raag Gola set to Adi Taal.

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।